0: पाजी थोड़ा जा क्लोज, थोड़ा जा। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह रुको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई वाह, की जोड़ी है यार, गुड।
1: ध्वनि तू कहाँ गुम हो जाती है, तू भी चलना हमारे साथ,
0: आइए आइए सर,
1: सनसेट पॉइंट तक फोटो खिंचाना।
2: नहीं मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ ऊंची ऊंची फोटो सेशन में, आज से ही जस्ट मी।

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे पटाख के तो जा।
0: क्या